आपका कैसे गो फिर का सुग्रा बोल रहे हैं आप अपन जमा लगा सभी शोरों में ना सरो 6 7 8 7 5 10 4 जो को को ने फिर का मिशो ए वो सुग्रा बोल रहे हैं सुग्रा टोटल जितना नगो नगो सर का शिमला शाह Aisha mkume mwune number 14 ni nalika kuwa na sumne rwane kabisho sikura mwune sabi kishoro mwune nalana 06 7 8 7 5 10 4 2 Enda tano mkishoro isa nafame kuwa gana nzana sukura number 7 mwune fene kabisho sikura mwune cha Abzara mwune sukura number 7 mwune mwune kwa na wani kia nako say ito enzana nake 06 7 8 7 5